मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसुर बाबा मदरसेसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसुर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313394941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर

0: Fact. Right after the commercial break.
1: 'ख्वाबों को हकीकत में बदलिए आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के साथ नए साल में एक नया आगाज
2: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे

0: पर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।

ओके खतरमन दोस्त आसुर अभी तक कौली शे जी कॉल्स कौली शे कॉन्टेक्ट कौली शे और प्रोग्राम के शामिल दे शे कॉल्स कॉल द फारा 0938200495 फदी नंबर बने सस्त लाइव कॉल्स एंटरटेन को शामिल हो आओ दखल मौजूद गए कम दिन तास माला एहसास रहा के आओ कसो को पकाल नशी रात ले यज कम दिन चाद फर्ज कम दिन ग्रह नहीं आगीद दा सिखा रू की अगीद मैसेज नमुंग तक

झूमर डालें तुम और मैं, दूर कहीं पर छोटा सा एक कच्चा सा घर तुम और मैं, कांदा तेरा और मेरा, पागल सी चुप और तुम और मैं। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, वा, वा, वा, वा, वा।

वैसे क्या ही खूबसूरत लाइन्स हैं जी, इस तरह इश्क बाराना मतलब मींस के तेरे इश्क की बारिश, हाय या तेरे इश्क इश्क।

अच्छा जनाब, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बारिशें जो है ना, ये बड़ी अजीब होती है ना। किसी के लिए सुकून बनकर बरसती हैं और किसी के लिए पुरानी यादों का एक तूफान मतलब लेके आती हैं। बाज़ लोग बारिश में भीग कर मुस्कुराते हैं और बाज़ लोग खिड़की के पास खामोश बैठकर सिर्फ जो है ना किसी को याद कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को बारिश बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बारिश में उन्हें मोहब्बत महसूस होती है, ठंडी हवा महसूस होती है, मिट्टी की खुशबू महसूस होती है, हल्की हल्की बूंदें और साथ किसी अपने का ख्याल, ये सब चीजें जो है ना दिल को अजीब से सुकून देती हैं। किसी का हाथ पकड़ कर लंबी सड़क पर चलने का सोचते हैं मतलब कुछ लोग। बारिश में किसी के साथ खामोश खड़े रहने का तस्वर करते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बारिश अच्छी नहीं लगती क्योंकि बारिश उन्हें किसी की याद दिलाती है, किसी के साथ भीगी हुई वो शामें, किसी की हंसी, किसी की बातें। और फिर वही इंसान जब साथ ना हो तो बारिश की बूंद दिल पर गिरती महसूस होती है। जी जनाब, मोहब्बत और बारिश का बड़ा एक गहरा ताल्लुक है। दोनों अचानक आती हैं, दोनों दिल को मतलब जो है ना भिगो के चली जाती हैं और दोनों के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। तो एक शायर ने क्या खूब कहा है कि बारिश की बूंदों ने जब तेरा नाम लिया, दिल फिर किसी पुरानी मोहब्बत में भीग गया। जनाब, बाद लोगों को मतलब जो है ना बारिश इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि बारिश में दुआएं जल्द कबूल होती हैं। और बाद लोग बारिश में इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वो इंसान याद आता है या याद आ जाता है जिसके साथ वो कभी बारिश में जो है ना भीगना चाहते थे। कभी बारिश की रात में मोबाइल हाथ में लेकर पुराने मैसेजेस पढ़ना, कभी खिड़की से बाहर देखते हुए किसी की आवाज को महसूस करना। हाय, वैसे आवाज को महसूस करना, आवाजों में भी बड़ा एक गहरा ताल्लुक होता है। मेरा और आप लोगों का ताल्लुक भी जो है वो भी मतलब जो है ना एक मतलब ये ताल्लुक भी एक आवाज का ताल्लुक है ना, साउंड का ताल्लुक है। ये साउंड की फ्रिक्वेंसी मतलब आवाज की फ्रिक्वेंसी आप लोगों तक पहुंच रही है।

ಓಯ್ ಓಯ್ ಓಯ್ ಜಾನಾನ ತೇರೆ ಗರ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಯೋ ಜುಂಗಳ ಸ್ತಾದ ಇದಂತ ಜೋಡೋ ಮಾ जनाब अब इजाजत का वक्त आ गया जी और ये वक्त हमेशा थोड़ा सा बारी सा लगता है क्योंकि बातें खत्म नहीं होती हैं बस रोकनी पड़ती हैं स्टॉप करनी पड़ती हैं ब्रेक लगानी पड़ती है मौसम वाकई जो है ना आज खूबसूरत है हवा में एक नरमी है फिजा में जो है ना एक खामोश सा सुकून है और दिल के अंदर भी वही हल्की सी कैफियत है जो कभी कभी कभी बगैर वजह के भी मतलब जो है ना उदास कर देती है और खूबसूरत भी कर देती और सब लोग मौसम का लुत्फ लीजिएगा जी मतलब जो है ना ये कि मौसम को एंजॉय कीजिएगा कभी खिड़की के पास बैठकर बाहर देख लीजिएगा कभी चाय के कप के साथ जो है ना ये लम्हे महसूस कीजिएगा क्योंकि जनाब वक्त बार बार वापस नहीं आता और ये खामोश लम्हे ही असल यादें बनते हैं जिंदगी में सबसे मुश्किल बात शायद यही होती है कि इंसान सबके साथ होते हुए भी कभी कभी अंदर से खाली महसूस करते हैं और कभी कभी किसी एक इंसान की याद पूरी दुनिया को मतलब जो है ना बारी बना देती है और यहाँ ये बात भी मैं कहना चाहूंगा जनाब कि एहसास वो चीज है जो लफ्जों में मुकम्मल नहीं होता ये दिल में मतलब उतरता है खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता और फिर इंसान को बदल देता है अगर मेरी बातों में कभी आपको अपना कोई दर्द महसूस हुआ हो तो समझ लीजिएगा कि रेडियो सिर्फ आवाज नहीं होता ये दिलों का रब्ता होता है और जनाब अब इजाजत चाहता हूँ अगर इन बेवफा सांसों ने वफा की अगर जिंदगी ने फिर मौका दिया जिंदगी ने बेवफाई ना की तो इंशाल्लाह अगली मुलाकात फिर इसी फ्रिक्वेंसी पर FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी से होगी इसी एहसास के साथ इसी दर्द के साथ और शायद इसी मुस्कुराहट के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मौसम का भी दिल का भी और खुद का भी और अगर मेरी बातों में कहीं सुकून मिला हो तो दुआओं में याद रखिएगा जहां रहेगा जिधर रहेगा खुश रहेगा कल भी पाकिस्तान यानी कि हमेशा रहे पाकिस्तान द अल्लाह पामान एंड लव यू ऑल बाय बाय टाटा

जिया द चार सदीना जिया बसते कना बाई शू और जमा नंबर अलीजा एम द मानसीना अलीजा संग एता सोई द आई सेम द सवाबीना प्रोग्राम जबरदस्त बाई क्यों क्यू आई चापरा सवाबी नाजू जानी द पेशावर मेहरबानी नैला डोना बासित बाई संग खई ओ बाबी संग बाबी सोखते जी मेहरबानी नैला डोना हिना दर्शवेडी सलामुना वालेकुम अस्सलाम सलाम बासिती बाई

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: ये रेडियो दिलवर सवाबी है और आप रेडियो दिलवर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: ये रेडियो दिलबर स्वाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा सता सुखार पर सवाबई की हूँ। बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश यो नवे नुम औ नवे फार्मूला आया तासु द खपल मगद तेर सरी द खातमे द पारा डेर क्रीमों ने इस्तेमाल कर तेर सरे वृक्षी औ ब्याराशी आया तासु द मग तेर सरो औ दागुरु सासर बेंतहा जदरा दस्ते दे आया तासु पर स्किन बाने दग मसलिश्ता खुतर उस पूरी तासुर ला इस किस्म क्रीम इस्तेमाल किडी निदी औ द आगे गट वजह तासु स्किन या इंतहाई सेंसिटिव दे इस किस्म क्रीम नशे लगो द दस किस्म ना उम्मीदा जनानो और दिनारिनो द पारा द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान द तुर्की इस्तेमाल युवा खास फार्मूला बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश कुमचे खास फार्मूला द तेर सरो द खात्मे द पारा कुमचे डीर खास फार्मूला द दाहुनो द खात्मे द पारा और कुमचे खास फार्मूला द सेंसिटिव स्किन द पारा पाकिस्तान के फर्स्ट टाइम दग क्रीम द ऑर्गेनिक इंग्रीडियंट्स ना तैयार शिवी दी और इस किस्म नुकसान तावान निलरी ओलचे दग फार्मूला पैराबीन और सल्फेट फ्री दी देखे इस किस्म खुशबू वगैरह न दे इस्तेमाल शिवी नुकतासो डीर न उम्मीद शिवी और द क्रीमानो नमो बेंतहाज मोड़ दे नुयोजल एतमाद कई और द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान दग खास फार्मूला को मचे द खास तेर सरो द पारा द दागुन द पारा और द सेंसिटिव स्किन द पारा तैयार शिविदा नुबिया इंतजार दस खबरी जर तर जरा दनिजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश तरला सके समा सहर जुड़वी नोर खंडवर बेलाडोना गोल्ड विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश तासो हम खपल सहर समा पसान खंडवर जुड़ गई हागम द बेलाडोना गोल्ड फेस वॉश सरा आउटूल और खपल मख द मुख्तलिफ किस्म मुजर असरातोना बचो साथ ही द मख्त खुला द पारा डेर फार्मूले इस्तेमाल करी हिस मजे ओ निकलला खपल बेरंग मख खपल द्वरंग मख औ खपल बदरंग मख द बेलाडोना गोल्ड क्रीम बेलाडोना गोल्ड फेस वॉश बेलाडोना गोल्ड सीरम औ द बेलाडोना ब्यूटी किट द यविश पे द इस्तेमाल सरा खपल मख गुल रंग कई खुश रंग कई औ स्पिन रंग कई औ हगहुम द टूल उमर द पारा द मजीद मालूमात द पारा 0-393-693-93 बेलाडोना को क्रिएशन बाय डॉक्टर हैदर अली मुमन द चार सदी और द चार सदी सरा द खौशा

ठाकुर की बिल्कुल संभाल के रही दकरी में पता डबी माने था सुध सलवी तो लाख रुपये दगे नमाद किसान तक शामिल होली सी और पता नमाद को टूल लुई नाम से दिनों का मेहरान मोटर कार दे कुम चुनन द खैर से राग से रिश्वे दो दता का मेहरान मोटर कार चुकुम कीमत दिनों का स्पालस स्पालस लाख रुपये रही उस दगा खुश नसीब सूख दे तो द मोटर विनर बजूड़ी ही याद लड़े चियो को अंदाजी मुंग पो अत लाख डबो की बयो को अंदाजी मुंग को आगे के बाद जर डबी मुंगर उबासु और आग जर डबो के बाद द कैमरे दिलारे लाइव को अंदाजी की द चासर हम चागा डबे रोजी डबी की दनन नंबर गो रही आग जरो किसान की बबिया मुंग दा कोशिश कूची मुंग या खुद शादी हाल प्रोग्राम अरेंज को या कजरे शादी हाल नहीं नमुंग आम प्रोग्राम दता अरेंज को अगले बतासो तबिया मुंग वायु सबको सब न को जी दे बाने खबर तेरे को

असू लेडीज अँड जेंटलमेन महिर वयता सुद्ध बेलडोना कास्मेटिक पाकिस्तान योडीर जाता खून दवरो शानदार एड्रेस जान तयार कियो द मेहरान मोटर कार भी नजूर छे दो उम्र में कमल पैकेज दसर हो गटे जी मोटरसाइकिल हो गटे मोटरसाइकिल दल खैर सर रोज में केला मजी ओले मोटरसाइकिल बदर को मदलखा फ्रिज दर लाला मजी वॉशिंग मशीन दलाला मा सलाई मशीन दलाला वॉशिंग मशीन दलाला मजी दूसरो जर वाले दूसरो जर में खकी एंड मच मोर गिफ्ट्स सो रेडियो से ओजान द बेलाडोना सरा निजदी निजदी साथी जी बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला अक्री बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश

0: बिल्कुल ऐसा ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी फैसल भाई, जी जी
0: बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जिस अभी अभी एक बैचिंग एक जगह से आपको कॉल है जिसमें वो मोबाइल पे डिस्कशन कर रहे थे,
1: जी जी।
0: फिर आपने उनको ये भी कहा कि जी ये आज का टॉपिक मेरा ये नहीं है, तो उन भाई के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप अपने जिस आपने उनको कहा कि जी आप अपने बेटे या बच्ची के साथ इतने वो फ्रैंक हो कि आप वो आपके साथ मसला डिस्कस
1: कर
0: रहे हैं कि यार मैं अपने वालदेन या माँ बाप से कैसे बात करूंगा।
1: बिल्कुल ठीक है जी जी बिल्कुल।
0: तो ये मैं सारी चीज होती है जाएंगी भाई एजुकेट करने की, कि आप अपने चाइल्ड के साथ या अपने बुद्ध के साथ इतना वो हो कि वो आपके साथ मसला
1: ये इश्यू है। बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, उनके साथ बैठाना चाहिए, बेटा आपको कोई मसला है, आपको क्या है क्या
0: ज्यादा। आजकल जो हालात चल रहे हैं लड़कियों की काउंसलिंग करनी चाहिए कि वो अपना डिफेंड कर सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सही।
0: क्योंकि वही बात है, मेरा माहौल हम देखते रहते हैं, जिस हम जान के प्रोग्राम देखते रहते हैं और प्रोग्राम देखते रहते हैं, तो कुछ इश्यूज हम देखते रहते हैं। तो क्या होता है, एजुकेट नहीं किया होता या वो अपने माँ बाप के साथ बात शेयर नहीं कर पाते,
1: शेयर नहीं करते,
0: इस वजह से वो लड़की या वो बच्चा या लड़की दब के रह जाती है माहौल में।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। देखिए ब्लैकमेलिंग की बात जो मैं इस पे मैंने एक टॉपिक भी रखा था ब्लैकमेलिंग पे खासकर, मैं असल में फैसला ऐसा है ना, मैं बड़े खुल के बात करता हूँ, खुल के बात करूंगा तो अगलों की समझ में बात आएगी, ठीक है
0: जी।
1: खुल के बात करूंगा तो अगलों की समझ में बात, अगर मैं अब इशारों में बात करूं ना तो बाज लोग मेरे तरह सीधे साधे लोग भी होते हैं जो समझ नहीं पाते।
0: जहांगीर भाई अपने आप प्रोग्राम का फायदा नहीं है कि अगर आप बात पहुंचाना सकें
1: जी। तो ब्लैकमेलिंग के हवाले से आपने इस पे मैंने टॉपिक भी रखा, आपने टच दे दी है। देखें एक सिंपल सी बात है, उस पर कभी फिर मैं दोबारा भी टॉपिक लाऊंगा कि ब्लैकमेलिंग क्यों होती है। आप कोई ना कोई अपनी कमजोरी किसी को बता देते हैं, ठीक है। अब जब बता देते हैं यहां पर जर्फ और कम जर्फ का पता चलता है, आला जर्फ कम जर्फ का। अगर आपने आला जर्फ के साथ अपना एक ताल्लुक रखा है, जो भी है बस ठीक है, बस ब्रेकअप हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। जब कम जर्फ होगा ना तो वो आपकी उस कमजोरियों से फायदा उठाएगा। अब उस बिचारी या बेचारे का कसूर क्या है, उस बिचारी या बेचारे का कसूर यह था कि उसने उस पर ट्रस्ट किया है। तो अगर ट्रस्ट का यही नेमुल बदल है, अगर ट्रस्ट का यह सिला मिलता किसी इंसान को, ठीक है ना, बेइज्जती की शक्ल में, नदामत की शक्ल में, शर्मिंदगी की शक्ल में, तो खुदा की कसम अब एक माँ अपने बेटे पर, ठीक है, एक बहन अपने भाई पर, जितने भी रिश्ते हैं हमारे, उस पर वो ट्रस्ट खो देगा, खत्म हो जाएगी ये चीज, ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। बहरहाल तो ऐसे सिलसिले में अगर कोई देखे, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो बहुत एक्सट्रीम कदम उठा लेती हैं, तो वो ऐसा हरगिज ना करें। गलती हो गई है, लेकिन आप आकर अपनी माँ के साथ डिस्कस करें, माँ आ जाएगी अपने हस्बैंड के लेगी, इस तरह मसला है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा।
1: हाँ, इश्तियाल में नहीं आना चाहिए, अपने अक्ल से काम लेना चाहिए। तो ये हम लोग किस वजह से कि बच्चे अपनी जगह डरते हैं, न माँ से बात शेयर कर सकते हैं, न बाप से कर सकते हैं। अगर उनसे शेयर करें तो वो जी आसमान को चढ़ जाते हैं, अच्छा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये इन चीजों से बचना चाहिए, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया फैसल भाई, थैंक यू सो वेरी मच। बात दूसरी तरफ चली गई है, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे।

0: इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे।
1: बात है ना कि मैं वो कह रहा ये यंगस्टर्स के जो आजकल जो नए नौजवान नस्ल इनके लिए मैसेज बहुत जरूरी है।
0: नहीं ये मैं करूंगा इंशाल्लाह, इस पे दोबारा मैं टॉपिक लाऊंगा इंशाल्लाह। मैं भी कि अगर आने वाले मंडे को मुझे याद रहे तो इंशाल्लाह मैं इस पे टॉपिक जरूर लाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है,
1: आप कैसे मैं बेसिकली जाएंगे भाई, मुझे आपसे दो तीन टॉपिक और भी डिस्कस करने थे। मैंने क्या
0: ये जो नंबर है ना फैसल, ये जो नंबर है ये मेरा यूज वाला नंबर है। अब मैंने मजबूरी से अपने नंबर पे मैं कॉल ले रहा हूँ, मुझे परेशानी भी बहुत होती है अभी मैं इस बात पे थोड़ा सा, मुझे वाकई मुश्किलात भी बहुत हैं, लेकिन जो मेरा दूसरा नंबर है जो मैं शोज के लिए था 0332 वाला वो खराब हुआ ठीक है, तो कल उसके लिए कुछ करता हूँ, तो तब तक आप मुझसे इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है,
1: बिल्कुल शेयर करूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप ये चीज मतलब एक चीज को उठाएं।
0: नहीं बिल्कुल बेशक वेलकम कहता हूँ आपको, शो के बाद आप